0: हर औ मासखुतन ये चमच इश्मा हर्बल आयल स्की या नीम कप उबो की द्व चमच इश्मा हर्बल आयल अचवई और स्की ये बस नूम याद साते
1: इश्मा हर्बल आयल
2: रेडियो अमन कभी नरम कभी गरम म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज रेडियो अमन आपके मन का अमन मन का अमन
3: हागो मशुमानो मयम हफीजुल्ला दैट्स ऑलरेडी रेडियो अमन नेटवर्क
4: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का जज्बा है आपको बाखबर रखने का एक अज्म अपनों को पास लाने का बिछड़ों को फिर से मिलाने का एक जज्बा आपको खुश रखने का आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: हागो मशुमानो मयम हतीजुल्ला कथोरी रेडियो अमन नेटवर्क।
2: रेडियो अमल जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

निकाला जाता है। इसी तरह कान कुंभ धातु को और चमड़ा सास खाल को बनाता है। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में ना डाली जाए

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: ऐसा खाइंदो ओ सोचना मकवाई हग वक्त लाड़ो चिनोर तबस वजे दले चुफ द जिनई वले दुम रखेस्ता दा ओस द जान खुलवलो यानी मक्स पिनवलो द पारा इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम और इश्मा फार्मूला क्रीमी फेस वॉश रगले दे मखबामो दुमरा स्पिन की दुमरा स्पिन चे जान ब पखपला न पेजने बसते का ना स्तासो ढेर तजुर्बे उकड़े पर ढेर क्रमोन दो कशवे ओस ब नोरे दो के नखरे जकाचे मार्केट ता ओस इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम रगले दी इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम द मख रंग स्पिनवी और द मख न तेर सरी द गुना स्तर गिलांदे तोरे हल्के बशर्तिया सर लड़केवी द टोल कमला सिर्फ और सिर्फ इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम के मौजूद दे ओस बदर तकोर के रोड द नवाच ए तोरे सप्लायर ला पलश का कस्तासो कोर सारा नजदी चरता हम न मिलेगी नुक अपने हेल्पलाइन नंबर बने रफ्ता ओके 0342 311 2292।

0: खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: अस्सलामु अलैकुम कुरानो मिनवालो जयम जयम सलाल हां तासो औरे प्रोग्राम द औरेलो

हाय हाय हाय दा शांत नवे नवे लेवे दे नवे नवे खबर दे नवे नवे किसे नो प्रोग्राम से तो लखपल आवर सरा सुमर हम मिड फैमिली प्रोग्राम और आगे टोल तहर कलाई सडी माची भाई वेलकम यू अच्छी मीठा प्रोग्राम और मना ना मना बस से प्रोग्राम रो सर और वे कना अस के दा सेन दे कना दा फैमिली चैनल लाइक दा सेन चे वे कना जखपल प्रोग्राम ना रूप शो नोर चे प्रोग्राम और कना हवाल पचार दा जखपल प्रोग्राम रूप शो वरवी आवर सरा वर सरा आनंद चिकिम ने कना नन स्पेशल गाना देमी सफर पनो मने वा स्पेशल होने गाना चिकिम ने कना दरबने ओरो देमी सफर दे परा नो मी सफर स्पेशल स्पेशल मी सफर देर जो तो फरमेश की गाना तेरा कला कला टे मिजी दावा कना कला कला टो मई देवी साइदो कला कला टेर न कला कला कला और ना वर्थिंग के लिसनर प्रोग्राम मुख से बिल्कुल भी आई और दे प्रोग्राम से तुसे पार्टिसिपेट दे पूरा नंबर 09272921 यानी 09272912 09272921 यानी 09212922 और कभी वैसे ना लदाश है दर्द दाश है कभी दाश है दाश है 09272921 तुसे भी आने 09272921 2 9 2

0: और सर किस मतलब लटल बिल्कुल सलाम मुनार लगी और ये प्रोग्राम और मां सारा सारा चिकुम निकना नूर कुमार टेलरान म सरान हम देर सारा किस मतलब टेलर देखे किना शाहजेब टेलर देवर सारा ओबल मुफ्खल आतिफ टेलर देर जो तमन्ना शुक्रिया आतिफ टेलर ता और सारा शाहजेब टेलर ता मीर सारा हमना सलमीना किस मतलब से का सलाम मेरे तक कहना हिदायशी बचाई सारा से पकोड़े गले रखली मेरा मन में इतकड़ा होकना नजोन तैयार के पकोड़े दे पर साइदो शाहजेब और सारा आतिफ खाना नजोन तैयार के साइदो देर जो तब हां दा मन्ना शुक्रिया जी से मीट प्रोग्राम रे मतो सर रेडियो 88.4 कर छे शाहजेब और आतिफ ता और देर देर वेलकम इन आवर किस मतलब टेलर तो ता हां वेलकम इन साइदो जगह कहना सी बेबिया कपड़े खुली नार तक गंडे फाइक कहना फातिमा लंडी बताओ सालो बाजी ता देर जो तमन्ना शुक्रिया ओ सरवर सर साइलेंट वायलेंट और आल लिसनर ता सलमीना अम्मी सो सलाम और देर जो ता बेहद मन्ना शुक्रिया बिल्कुल अमित सच किने गला शहजादी में सोच किने प्रोग्राम से मैं से खड़े टांग ना हम मो ख्याल दे मिडा रेगुलर लिसनर वा ओ से टांग तक किने रगोली दो मक्ष उप मकिन से मिडा 88.4 करक और दला ओ बोस पर टांग से दो बदखले मौजूद गे एहसास रुकड़ा दे कहना सर जहां प्रोग्राम कना वरो देने ला चिकने गना जहां पार्टिसिपेट दर सरकार उसे दे रेगुलर लिसनर या देर जो तमन्ना
1: वन कलाई में ग्राम बोली गलत बोली वन कलाई में ग्राम बोली गलत बोली
0: ओ गुरी प्रोग्राम से कलर साहब गुरी जी चुगर से लेकिन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: खैर खैर है तमजीर बुरो में सो खबर के देखिम जिना
2: حیات خبر ہے کہ خرام نا
0: اچھا حیات خبر کرے خرام نا حیات پر گام خیر کلا ویلکم سڈی ماشی وی
2: دیر تو بس کین سر اللہ دا مجھ سول جواب زدی دا دیر چا یو فرمائش تے پتہ پورا کاواش
0: اچھا تو سول جواب کے فرمائش ہاں
2: سر سول تے جواب دا سور جے کی دی انسان ونے متا چا آزادی
0: سور کیمیو
2: سور سور
0: سور
2: خنزیر
0: اچھا خنزیر ہاں फिंगर प्रिंट सिर्फ शवला है ना दस बज के आजाद बंदर वहां देखे ना अच्छा किदेश हो तो देने 100% पे एग्री तना है तुम्हारा फर्स्ट टाइम देखा लकड़ा है बाकी जी सोना इधर था पीरा का फरमेश हो अच्छा गुरगुरे तोरे तोरे गुरगुरे तोरे तोरे लला भी और था खून दिदा से ना दस लाख नष्ट था गो ना ना तब मुतर था खून ना उस गुरगुरे तोरे तोरे मुतर खून दार करी ची तू सर था खून दे
2: ना खो वश बस वो खून दे मतलब
0: अच्छा सर अंगार था खून ना उस हाँ हाँ खून दा मना लाख फान दास क्या ना ची चिरा उस टाइम से मिस्ता खून दे क्या ना अच्छा साइड नो बिल्कुल मैंने जूम सर खून दस आई दो सर ढेर से तमन कल ढेर से तमन बेहद बेहद देखिए शुक्रिया देखिए यो जहान होना बिल्कुल फरा मैंने कल रोए ढेर से तमन देखिए अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम
3: चार
0: कर और सर जमा पर शो से हर कला वेलकम स्पेशल पर लाइन टाइम शो के

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: छोड़ दिया दिल को यूं बहना, जाने तमन्ना जाने आदा,
2: जहां मिले आपको तफरी,
3: जहां मिले आपको मालूमात
2: और जहां गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
2: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: सिफात राइस फेस वॉश कचर तुगाड़े चिमख मुसफा ताज़ा स्पिन और खुलिख कराशी नो सिफात राइस फेस वॉश इस्तेमाल करे। सिफात राइस फेस वॉश तासु दमख न गंदगी मख्स पुरे के दल हमेशा द पारा खत्म करी द देना इलावा द सिफात राइस फेस वॉश पा इस्तेमाल सरा तासु मख नरम मुलायम सफा और तजहकारी और दमख दानो और दगुनो व सफा कवलो के मुहिम रोल अदा कवी नो इंतजार दस खबरें ओ सोज पल निजदे मार्केट तलाशे और सिफात राइस फेस वॉश तला सकड़े नूरो मालूमात लापारा द सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर साहिब सरा पदे नंबर रविता कवलेश है 0301 80 84 300।

ओ पजड़े दिशे दी रात वाया, या पजड़े दिशे दी रात वाया, दलग बैना सरा बबोज दजड़ कमशीना। और जिन्हें बचे कुछ गुजाड़ी, या जिन्हें बचे कुछ गुजाड़ी, लका चिजवन के मोर फ्लार बैलले दिना। आओ ताता भी याद भी आओ कने भी, माता हो याद दी दखुगमन झड़की तर दुना। आओ ताता भी टूकी टूकी खकारी, आओ ताता भी टूकी टूकी खकारी, मरास हमदर्द गटो को की रिख्तियाली दली दिना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा अस्सलाम वालेकुम।

जी जनाब देने लवा तुसे इस्तेमाल वाले शे द्रे किस्मा शैम्पू दखो जिफा कंपनी च पागे शे दवरी शे शैम्पू दो आओ देने लवा दे प्यूजे शैम्पू हम दो आओ बला शैम्पू जनाब कलवन जी शैम्पू तरीने शैम्पू दे जरूर ये ट्राई के जरूर ये इस्तेमाल के ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਹਕ ਦੇ ਬਦਨ ਸਫਾਈ।

हाय जी जनाब, शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट तुसे तो पहार जिसे मिला वी जी यलेश की और बाद एड्रेस इज हंदर सर शामिल हो प्रोग्राम तुसे इस्तेमाल वाला शे खुजेफा कंपनी शिफा प्रोडक्ट खुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम दुने दुकीना डबीना तरचरी दिमाग गंजा दिमाग तुर वल्ला शर्तिया खत्म कभी उदे तुसे मख जुड़ा भी तक स्पिन स्पिन।

0: खुशखबरी खुशखबरी, हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है,
2: खारिश खुश्की सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है,
1: फिर भी हफ्ते में एक बार
2: या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें
1: ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
0: हुजीफा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवाओ थोरो निशान वाला खुजीफा कंपनी शिफा तिल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर विख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तिल पखपल सरबा ने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तिल विश्तान गुर्जवल बंदवी विख्तान गण औ उजद कवि देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-36-36 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

जी जनाब, नवरंग खबर है कौश नौ फ्रेश वे बिक रही था दे नवरंग उसी दिन की दला की मरवत उसी दिन की फ्रेश वे बिक रही था जोनर रसवाश और शिफा प्रोडक्ट को खुशता देने लगा जब शॉपिंग सेंटर सराय नौरा शेरे पंजाब बेकरी सराय नौरा लुकमान जनरल स्टोर मनियारी गली नौरा जहांगीर मनियारी गली नौरा और खाजी अहमद शाह मनियारी गली नौरा।

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक।
1: वजीद खान अरोरा सब बेसोरा बेसोरा गर्जे सचल दे दे
2: अख्तर लाला सब दर्तवाय डेर वक्त न में पे वजूद के दर्दु न दी औ मैदा में डेर ज्याता स्वजी
1: वजीद खान अरोरा चरत दे इलाज न दे करे
2: इलाज में डेरो को लाला हो हिस फर्क पाने नयम पुछे
1: वजीद खान अरोरा तवले खपकेगे उस पकरक के तबलीगी मरकज सरा द खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी सरा निजदे दरमान होम्योपैथिक के डॉक्टर मुस्तफा कमाल से पोनेग्राने के दे मुख्तलिफ बीमारी इलाज कीजिए लका असबी कमजोरी असबी दर्दना मुख्तलिफ किस्म एलर्जी द बदन परसो द सरमनी बीमारियाने बेवक्त वीखस पीने दल वीख्त गुर्जे दल नरीना और जनना बेऔलादई बीमारियाने और द जनना रसूली और द ट्यूबुलो बंदश द मशुमानो जहनी कमजोरी द जिगर खराबे दो पवजा तबारत लल बदजमय द कुलमो स्वजे दल द कुलमो बाहर तरवत खूनी और बदी बवासीर पेचस प्रास्टेट द त्रिखी काणी द त्रिखी सूजिश और द त्रिखी परसोप द गुर्दे काणी द गुर्दो स्वजे दल द गुर्दो खराबे दल द खो ताले स्वजे दल द फो परसोप और द फो दर्दुना प्लोचे दल और द मैदे स्वजे दल और द मैदे गैस और वरसरा वरसरा यूरिक एसिड और द बदन दर्दुनो सरा द जुड़ुनो दर्दुनो इलाज आसान और मियरी कीमत सरा कीजिए
2: अख्तर लाला दा खुडी रख खबर दा चिको दरमान होम्योपैथिक सेंटर के दोनों डेरू बीमारो इलाज कीगी माता हम मोबाइल नंबर और पता खाया चीज हम वर्षम
1: वजीद खान अरोरा ची वर्जी खुदा खबर हम याद सता ची डॉक्टर से बिहारी मियाश्ते 14, 15, 29 और 30 बंदे छुट्टी करी पता ओवरवा दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक तबलीगी मरकज सरा निजदे खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी ता महुमा और मोबाइल नंबर हजुम सरा नोट का 0331-12-12-413।
3: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: साहि जी टोल गलाती है सा टोल वंदा जी गलाती दी मौसरे हो बस सुख मौजूदी अच्छा ओस वर्ष है जी ओस बसुख में तो खोच और इधर को भी को प्रोग्राम मकते बुजुर्ग प्रोग्राम के लगे गप शाह प्रोग्राम के सबक मोस खबर है हाँ मसाले तक हम बिल्कुल उसे प्रोग्राम के मौजूद है मुझे खोज रोल रकीब खटक राकीब खटक तड़े माशे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और जाने प्रोग्राम के डेढ़ वेलकम हर गले स्टडी माशे देता हूं यहां हर कला रोशी सरंग से बरबार है
1: वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच राज भाई आप प्रोग्राम के स्टोरी महफिल की उजलवियत से रजा महामखिया डेढ़ जबरदस्त खानियों वकड़ा मजा वकड़ा क्योंकि दी प्रोग्राम के डेढ़ अधिकार खबर है सबक मौज
0: हां
1: विसरा विसरा
0: मसरानोमा
1: तरानोमा
0: तापी
1: तापी
0: मसाले
1: बिल्कुल बिल्कुल दा लगा दस फॉर्मेट प्रोग्राम छी यकीनन छी जड़वे सरा
0: मजा कहेगा ना
1: खान कही बिल्कुल कहना
0: जी
1: स्टार्टिंग के वजह से शुरू न हुए छी सुमरा खैस्ता खैस्ता खुबू नवीनम سمرا خیستا خیستا خوبو نوینم کلازغی کل گلو نوینم
0: واجی وان
1: زده دنیا نهم جدا جدایم راز بایی
0: زده دنیا نهم جدا جدایم دیر شم پزرا بوی

0: जी मैनेजर से
1: पचागोर नकीगी पशोर नकीगी मीना हो मीना दा पजोर पजोर नकीगी
2: पचगो नकीगी पशोर नकीगी पचगो नकीगी पशोर नकीगी मीना हो मीना दा